में श्री घाटे के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रघुवीर पांचाल और सहकारियों के स्वर में ये रचना।

पांचाल और सहकारियों के स्वर में ये रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली हिंदी भक्ति रचना है अजीत कौर के स्वर में, रचयिता है प्रेम सखी।

उमर सखी ने रची ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी अजीत कौर के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में समर्थ रामदास स्वामी की ये भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं आनंद मोड़क।

रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे आनंद मोड़क। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं मोहनलाल मिश्र. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन, कलाकार मोहनलाल मिश्र.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे मोहनलाल मिश्र। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समीर नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग परमेश्वरी में गिटार वादन। आज के कलाकार हैं देवोतोष्टे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग परमेश्वरी में गिटार वादन, कलाकार देवोतोष्टे।
1: You are listening to Khayal in Raag Ahir Bhairab by your artist Mohanlal Mishra. Accompanying on the tabla, Samir Nandi, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. This is Raagam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present our guitar recital in Raag Parameshwari. Our next artist, Devotosh De, accompanying on the tabla, Tarun Roy. Now, listen to a guitar recital in Raag Parameshwari by our artist Devotosh De.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी में गिटार वादन सुन रहे थे। आज एक कलाकार थे देवतोष डे, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a guitar recital in Rag Parameshwari by our artist Devatosh De, accompanying on the tabla Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है श्रीकांत बाखरे। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया

राग भैरव सुनते हैं। विलंबित एकताल मिनिबद्ध रचना के बोल है राघव राज राम राज, और द्रुत एकताल मिनिबद्ध रचना के बोल है महादेव शिव शंकर। सात संगत हारमोनियम राजू परांस पे और तबला विकास पुरंदरे। तो आइए सुनते हैं राग भैरव, कलाकार श्रीकांत बाखरे।

श्रोताओ, अभी आपने सुना श्रीकांत बाखरे द्वारा प्रस्तुत राग भैरव। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे राजू परांजपे, तबले पर थे विकास पुरंदरे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं श्रीकांत बाखरे द्वारा प्रस्तुत राग हंसध ध्वनि। लंबी झुमरा में निबद्ध रचना के बोल है दैयारे मनाए नहीं माने, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है शंभू का डमरू डमडम बाजे। साथ संगत हारमोनियम राजू परांजपे, तबला विकास पुरंदरे। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत बाखरे द्वारा प्रस्तुत राग हंसध ध्वनि।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राग हंस ध्वनि, कलाकार थे श्रीकांत बाखरे। आप साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे राजू परांजपे पे, तबले पर थे विकास पुरंदरे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी, रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन. पहले प्रस्तुत है राग तिलंग में ठुमरी. बोल हैं सांवरे सलोने मोरे श्याम. तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. In the program of Light Music, we now present a vocal rendition by Ustad Lakshman Das Sindhu. First, listen to Thumri in Rag Tilang. The words are Savre Salone Moresha. Is accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla.

0: अभी आप सुन रहे थे राग तिलंग में ठुमरी, और अब पेश है मुल्तानी काफी, बोल हैं वाह वे सजन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग तिलंग एंड नाउ लिसन टू मुल्तानी काफी। द वर्ड्स आर वाह वे सजन।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मुल्तानी काफी अभी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए मिश्र काफी ठुमरी, बोल है नाही पड़े मोसे चै। तबले पर आपकी संगति है हशमत अली खाने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मुल्तानी काफी। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी। द वर्ड्स आर नाही पड़े मोसे चैन, अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र काफी में ठुमरी, और अब सुनिए सूफियाना कलाम। रचना बाबा बुल्ले शाह की है, बोल हैं की जाना मैं कौन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी एंड नाउ लिसन टू सूफियाना कलाम। इट्स कम्पोज्ड बाय बाबा बुल्ले शाह। द वर्ड्स आर की जाना मैं कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये सूफियाना कलाम, और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी। बोल हैं सैया बोलो मोसे तनक।
1: यू वर लिसनिंग टू सूफियाना कलाम, नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। द वर्ड्स आर सैया बोलो मोसे तनक।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा। बोल हैं मैंने लाखों के बोल सहे।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू एंड नाउ लिसन टू दादरा। द वर्ड्स आर मैंने लाख के बोल सहे।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया ये दादरा भी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए राग मिश्र तिलंग में ठुमरी। बोल हैं अब के सावन घर आजा।
1: यू वर लिसनिंग टू दादरा एंड नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग। द वर्ड्स आर अब के सावन घर आजा।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र तिलंग में ठुमरी अभी सुन रहे थी। और अब सुनिए दादरा, बोल है दिल की ये नजर का निशाना हुआ।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर दिल की ये नजर का निशाना हुआ।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी हशमत अली खान ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: इन द प्रोग्राम ऑफ लाइट म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित लक्ष्मण दास सिंधु। ही वाज अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शर्वरी अरगड़े द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय गायन। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग बिलास खनी तोड़ी सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है तोरी के मदमात, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है त्यजरे अभिमान। साथ संगत तबला योगेश सोनी और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग बिलास खनी तोड़ी, कलाकार शर्वरी अरगड़े।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राग बिलास खनी तोड़ी, प्रस्तुत किया था शर्वरी अरगड़े ने। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे योगेश सोनी और हारमोनियम पर उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम को जागते हुए सुनते हैं शर्वरी अरगड़े द्वारा प्रस्तुत राग मालकंस, विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है दया करो अवतो, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है आए पी मोरे मंदिरवा। साथ संगत तबला योगेश सोनी और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग मालकंस, कलाकार शर्वरी अरगड़े।

श्रोताओ, अभी आपने सुना राग मालकंस, प्रस्तुत किया था शर्वरी अरगड़े ने। आपके साथ तबले पर थे योगेश सोनी और हारमोनियम पर उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा. आज के कलाकार हैं निवेदिता बंदोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नाड़ गोपाल पात्रो और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो. निवेदिता बंदोपाध्याय अपने गायन का आरंभ राग मिश्र विभाग में एक ठुमरी से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं ये ठुमरी. कलाकार निवेदिता बंदोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a Mishra Bihag Thumri followed by a Gara Dadra. Our artist is Nibedita Banerjee. Accompanying our artist on the tabla is Naru Gopal Patro and on the harmonium is Ratan Notto. Listen now to a Mishra Bihag Thumri followed by a Gara Dadra, our artist, Nibedita Banerjee.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मिश्र विभाग में ये ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थीं

निवेदिता बंदोपाध्याय। निवेदिता बंदोपाध्याय अपने गायन का समापन गरा दादरा से कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं ये गरा दादरा, कलाकार निवेदिता बंदोपाध्याय।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये गरा दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी निवेदिता बंदोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे नाड़ू गोपाल पात्रो और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंचम सवारी ताल में तबला वादन। कलाकार हैं विभास संघाई। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो। तो लीजिए प्रस्तुत है पंचम सवारी ताल में तबला वादन, कलाकार विभास संघाई।
1: You were listening to a Mishra Bihag Thumri followed by a Gara Dadra. Our artist was Nibedita Banerjee. Accompanying our artist on the tabla was Naru Gopal Patro and on the harmonium was Ratan Notto. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a tabla

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप पंचम सवारी ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे विभा संघाई। आज आपके साथ हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे रतन अट्टो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to the tabla in Pancham Savari Tal. Our artist was Bivash Sanghai. Accompanying him on the harmonium was

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरीश तिवारी द्वारा प्रस्तुत राग मियां मल्हार। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे थे श्री राम हसबनीस और तबले पर विनोद लेले। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं डॉक्टर हरीश तिवारी द्वारा प्रस्तुत राग सुर मल्हार। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है गरज आए और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है बदरवा बरसन लागी। साथ संगत हारमोनियम श्री राम हसबनीस और तबला विनोद लेले। तो आइए सुनते हैं राग सुर मल्हार, कलाकार डॉक्टर हरीश तिवारी।

आप सुन रहे थे डॉक्टर हरीश तिवारी द्वारा प्रस्तुत राग सूर मल्हार। आपके साथ हारमोनियम पर थे श्रीराम हसबनीस और तबले पर थे विनोद लेले। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

Hey,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत. आज प्रस्तुत है पंडित सतीश चंद का सितार वादन. सबसे पहले आप राग जौनपुरी प्रस्तुत करेंगे. विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत भी तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी.

ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारती गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सितार पर राग किरवानी। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग की रवानी। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे सितार पर बजाया राग गारा में एक धुन से, जो कि दादरा में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग गारा में धुन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे शीतल प्रसाद मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Meet Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उमा गर्ग का गाया राग श्याम कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है झूलत राधा प्यारी, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है बावरी भई पिया बिना. तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.

0: लीजिए अब सुनिए उमा गर्ग का गाया राग कौसी कान्हड़ा। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दिन बीत गए, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल, शी नाउ प्रेजेंट्स राग कौसी कान्हड़ा। शी फर्स्ट प्रेजेंट्स विलंबित ख्याल टू एक ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस विलंबित ख्याल आर दिन बीत गए। दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू तीन ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस आर काहे करत मोरी बरजोरी।

0: अभी आप उमा गर्ग का गाया राग कौसी कांढा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिस्निंग टू राग कौसी कांढा संग बाय श्रीमती उमा गर्ग। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री अख्तर हसन, ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। This program was a presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित संजीव अभ्यंकर ने गाई इस भक्ति रचना से।

पंडित संजीव अभ्यंकर के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली पारंपरिक भक्ति रचना आइए सुनते हैं आरोही राजुरकर के स्वर में।

आरोही राजूर करने गाई ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पद्माकर कुलकर्णी के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की यह भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर कुलकर्णी के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री मलिक के स्वर में ये भक्ति रचना।

श्री मलिक ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब संत मुक्ताबाई रचित एक पारंपरिक गौरण सुनते।

अभी आपने संत मुक्ताबाई ने रची एक पारंपरिक गवर्ण सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं तुकाराम महाराज ने रची ये भक्ति रचना, जिसे गाया है राजा काटे ने।